0: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Lopti Li Chen.
1: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Lopti Li Chen.
2: Jachewi Sengke Namba, Nganu Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Longqing Je, Sengpa Chichi Li Chen Ge Gengen Longzang Nima Yin. अने लोंडे कोमा गना ला अ तिनी गा जो हिजा जो दे गारे सेना ता संजि बा ग जा द मा हिबा ला जई छानी अ गेवा संग थोनी इनी मा येजे या बा अ थोमार गेवा तिनजी चोंबा लन जुबि गे येला भारत गेवा युंदे निन छे बा थामार गेवा जुक दे सेने सुन या बा ता अ तिनी देयांग थोमार गेवा तिनजी चोंबा लन जुबि गे येला से या दिला छेमी बा ता जर्षा छिजे चोंबार तांजा सेने नंसी ग या सन जाबो जियो बा ता ठीक नानी अनी तेंजी गन छेमी पास या ओ ता ठीक करला तनी नचो मा हिबा तनी जिरे अनी देदा जेलते नचो सैयिक ड्रा काही जि या बारे न ड्रा तंबो द गारे से दिल ता नचो बेकेज केचा के योवा गन न चवी जछा न होते सुन यो बा द गन जिरे देदा तनी दाट बि यु न संता ता सुन यो बा ते सो तन जवा गन जिरे ता ते सो ता तेला नचो गोंग खोंदे न हिबा नाही ngatu bhemi ju ngin chen ba yin na ani ngatu ni peke ji jue ba yin na yin ra yito ni peke ji ji ba yin na yin do na yin a gharung tu ni peke ji yuwa pe wa la zai cha ni ani ming chang ba gari dang sha zi gari dang ani chi chik gari sam ka to ni ani zhig yu re is di yin di le ming chang da sha zi da chi chik de sen tak cha chi chik de sen ji yuwa pe chit yang da ba ji ma yun ba yin na ani yito da ngatu gharung ke cha de yang 吃哇 된지지 쇼니 아 아니 다데고 사보지 쳔 못바다 다데 내랑카바지 쳔 못바다 다 태송진지 지바야 다 로버지 바 된지기 쇼에 마보진 그레스 다다 디정한서 초하고 말 빼마보여 바 된지들 다 된지지 문중하러 시발라 아니 민장다 샤지다 치치게 나양데서 아 치치게 조합 뺏은데서 좀 하다 아 양다 바지 옹게 바다 다 같이 보자디요레스 된들 다 대소대 양다 바지 용하 시발라 아 아니 선지 바당 당주 나타 다익 다트비 윤데소데 다 하장가다 같이 왔자디요 데인들 선다 다스지 윤데소데 야보지 탈심바 삐다보지 양타바이나 아니 양바 짠데 마제 데 라랭돌로 야보지 베시